0: बौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पाए हुरमत सुनोगली बजो पी धूना खा खसमे करे बराबरी फिर गैर तिंदर पाए बजो गवाए अगला मोहे मोहे पाना खाए जिसदा दिता खावना तिस कहिए साबास नार हुक्म न चले नाल खसम चले अरदास नाल खसम चले अरदास नाल खसम चले अरदास
1: सतगुर होए दया ता सरदा पूरी है।

पौड़ी नानक अंतर जपनी हर तां के भरावा आप कराए सागति फिर आप कराए मा एक ना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़ाए बिसया आप कराए करे आप हो कैसे करी पुकार।

ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चहन अर बरन जात अर पात महन जे रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत के अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कहज कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिज त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत त्वय सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत जग और ना याहे महातम मैं अवतारे जागरे आन किया तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिने अमृत नाम पिया एह पद्धत ते मत चूकह रे मान भेद विभेद न जान बियाओ प्रताक्ष रिज गुरु अर्जुन कै प्रताक्ष हृदय गुरु अर्जुन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो चरण सरण गुर एक पेंडा जाए चल सतगुर कोट पेंडा आगे होए लेत है एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र सिमरन ताहे बारंबार गुर हेत है पावने भगत पाए कौडी अगर पाग रखै ताहे गुर सर्व निदान दान देत है सतगुर दया निद महिमा अगाध बोध नमो नमो नमो नमो नेत नेत नेत है दरमादे ठाडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल केवार तुम तन तनी उदार त्यागी श्रवणन सुनियत सुजस तुमार मांगो काहे रंक सब देखो तुम ही ते मेरो निस्तार जय देव नमा बिप सुदमा
जिनका कृपा पई है अपार। कह कबीर तुम समरथ दाते, चार पदार्थ देत न बार। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहो सरणाई। अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपने, तन मन हुए निहाल। जा गुर देखा सामने, सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसम दी, नूर अरसह कुरसह चटिया। तुद डिठे सच्चे पाते साह, माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर सहादा साहु। जिस पास बैठिया सोहिया,

ताकौ तुख कहाँ व्यापन जाकौ ऊट तुहारे रहा बिन सिमरन जो जीवन बलना

तन्न ओसो जनमान नानक तिस बलिहारे गुण निदान गुण ते नहीं गाए जा कौ कृपा धारी।

तन्न उस जन्म नानक तिस बलिहारे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। टोडी महला पंजवा हर बिस्तरत सदा खुआरी ता कौ धोखा कहां ब्यापै जा कौ ओट

गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो, आप हाथ दै मोहे बचाव हो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन को आज संघरियै। पूरन होए हमारी आशा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करिया हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाई ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, काट काट के पट पट की जानै। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पीव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पुज खान बहुर रच दीनी।
कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्टि दिखाए अचम्भव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगर हो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलिश करो रण काता। जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित होय मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा होय ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहारे हो, ताकि ताप तनक मह हारे हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फासते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा।

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आनेयो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तो हे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ के

जालौ ऐसी रीत जित मैं प्यारा विसरै, नानक साई भली परीत जित साहेब सेती पत रहै। प्रभ की प्रीत सदा सुख होए, प्रभ की प्रीत दुख लगै न कोय। प्रभ की प्रीत हऊँ मैं मालिक होए, प्रभ की प्रीत सद निर्मल होए। सुन हौ मीत ऐसा प्रेम प्यार, जी प्राण काट काट आधार रहाउ। प्रभ की प्रीत पाए सगल निदान, प्रभ की प्रीत हृदय निर्मल नाम। प्रभ की प्रीत सद शोभावंत, प्रभ की प्रीत सब मिटी है चिंत। प्रभ की प्रीत एहो भव जल तरै, प्रभ की प्रीत जमते नहीं डरै। प्रभ की प्रीत सगल उधारै, प्रभ की प्रीत चलै संगारै। आपहु कोई मिलै ना भूलै, जिस प्रसाद तिस साध संग कूलै।

चंद चकोर परीत है देख ध्यान तरंदा चकवी सूरज हित है संजोग बनंदा नार पतार प्यार है मां पुत मिलंदा आपे आप वरतदा

है अहन सहज सुभाई दर्शन पर से गुरु कै जन्म मरण दुख जाई हो वै सिफत खसम दी नूर अर सहकुर स

अमृत शार बिख बिख खाई, माया मोह परम पै कूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। इक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। इक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राख शरणाई। इक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राख शरणाई। सुकह टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाई। दर्शन परसया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। हो वै सिफत खसाम दी, नूर अरसोह कुरसोह चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, बल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दै शाहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहो। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दै शाहो। जिस पास बैठिया सोहिया,

हृदय कपट मुख ज्ञानी झूठे कह बिलोवस पानी हृदय कपट मुख ज्ञानी झूठे।

कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर

हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई, माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जमत्र।

मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करेगा वावह मंगे मोख द्वार। जति सदावे जुगत न जाने, छड़ बहे हैं कारबार, सबको पूरा।

राखी अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै पुले सुत दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत।

तब लग मुक्त न कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जान सोई वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह तनासरी महला पंजवा जतन करे मानुख डहकावे ओह अंतर जामी जाने पाप करे कार मुकर पावे पेख करे निर्वाण

पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूज सबगुल समादं मुख झूठ बिभूखण सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक लाटं दोय धोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सफोकट नह चौकर्मं कहुना।

0: पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना
1: मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना
0: हुक्म किए मन पाव दे रा पीड़ै अगे जावना नंगा दोजक चलिया तां दिसै खरा डरावना नंगा दोजक चलिया तां दिसै खरा डरावना करे उगण।

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिटै सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निद आवताय। सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा